0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुच्चेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुच्चेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुच्चेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: दलीय कर्मीको मार्गदर्शन पाई श्री मोदी बीजेपी सभापति नितिन नवीन को प्रशंसा करिछन्ति। आपण माने संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी रो। आमेरिकीय जहाजगुड़िक उपरे ईरान आक्रमण कले कठोर परिणाम भोग करिवो बोली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चेतावनी देइछन्ति। संयुक्त आरब एमिरेट्स उपरे ईरान रो आक्रमण परिप्रेक्ष्य रे ट्रम्प एही मंतव्य देइछन्ति। वाशिंगटन देइथिबा सूचना अनुजाई हरमुज प्रणाली रे ईरान रो सातटी डंगा उपरे अमेरिका सेना आक्रमण करिछि। युक्तराष्ट्र अमेरिकार केन्द्रीय कमाण्ड ए संपर्क रे सूचना देइ कहिछि सेगुडिक ध्वंस करिबा पई अमेरिका सेना पक्षरु हेलिकॉप्टर नियोजित करा जाइथिला। तेबे एने ईरान पक्षरु बृत्ति दिया जाए नहीं। अमेरिका एवं ईरान मध्य एभली चेतावनी और सामरिक कार्यानुष्ठान नहीं हरमुज प्रणाली उत्तेजना वृद्धि पाउछि। अटकी रही जहाजगुड़िक सुरक्षित भाव हरमुज प्रणाली अतिक्रम करने को अमेरिकार जहाज सहायता प्रदान करने लक्ष्य रखी प्रोजेक्ट फ्रीडम यह एक अंशस्वरूप होमेरिका वर्णना कर। अमेरिका केन्द्रीय कमाण्डर मुख्य ब्राड कुपर कही 87 देशर जहाज यह उत्तेजना परिप्रेक्षी में अटकी रही। अंपक्ष ईरान हरमुज प्रणाली बंद रही। अमेरिकार जहाज उपर ईरान पक्षर चेतावनी भाव गुड़ी कर ईरान सूचना देछि। वैदेशिक मंत्री डॉ एस जयशंकर जमैका प्रतिपक्ष कामिना जनसन स्मिथ एवं सेठाकर कैबिनेट मंत्रिमंडल सदस्यों सह आलोचना करिछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे डॉ जयशंकर कहिछन्ति बैठक अवसर में द्विपाक्षिक सहभागितार विभिन्न दिग उपरे मत विनिमय होइछि। शिक्षा स्वास्थ्य कृषि डिजिटल क्षेत्र पर्यटन क्रीड़ा मनोरंजन भित्तिभूमि विकास दक्षता निर्माण आदि विभिन्न प्रसंगे उभय पक्षों मध्य आलोचना होता श्री जयशंकर कहते। जमैकार शिल्प एवं व्यवसायी नेतृवृंद डॉक्टर जयशंकर आलोचना करिथिबा सूचना देछन्ति। केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पदर इस्तफा प्रदान करिछन्ति। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ विजय पर श्री विजयन एहि निष्पत्ति ग्रहण करिछन्ति। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आरलेकर श्री विजयन इस्तफा पत्र को ग्रहण करिनेछन्ति। राजभवन सूत्र मिलिथिबा सूचना अनुयायी नूतन सरकार गठन एवं शपथ ग्रहण पर्यंत मुख्यमंत्री पदवीर कार्यनिर्वाह करिबाकु श्री विजयन को राज्यपाल श्री आरलेकर अनुरोध करिछन्ति। जालियाती बेआईन अर्थ कारबार अभियुक्त पलातक महम्मद नभास कक्कत इस्माइल को भारत को अणाई केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सूचना अनुजाई अभियुक्त इस्माइल संयुक्त आरब एमिरेट्स को पलायन कर। दिल्ली पुलिस अनुरोध क्रमे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय और गृह मंत्रालय समन्वय रक्षा कर सीबीआई इस्माइल को सफलतार भारत को आनी गतका नुआदिल्लीर इंदिरा गांधी आंतर्जातिक विमान बंदर पहुंचा पर इस्माइल को दिल्ली पुलिस गिरफ कर। आईपीएल क्रिकेट गतकालीर मैच मुंबई इंडियंस विजयी होई। मुंबई वांखड़े स्टेडियम खेला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस 6 विकेट परास्त कर। टॉस जीती मुंबई इंडियंस प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं। निर्धारित 20 ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स 5 विकेट विनिमय 228 रन संग्रह कर। 229 रन विजय लक्ष्य को 18 ओवर 4 बॉल रे 4 विकेट विनिमय मुंबई इंडियंस हासिल कर। रियान रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होती। एहि विजय सह मुंबई इंडियंस पॉइंट तालिका रे षष्ठ स्थान को उन्नीत हो। लखनऊ सुपर जायंट्स 9 मैच रु मात्र 4 पॉइंट हासिल कर। आज दिल्ली कैपिटल्स एवं चेन्नई सुपर किंग्स मध्य मैच खेल। दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम मैच संध्या 7:30 आरंभ हो। मुख्य संवाद गुड़िक पुणि थरे पश्चिमबंग एवं आसाम विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। पुडुचेरी में पुनः सरकार गठन करिबो एनडीए। तमिलनाडु में प्रथम थर पर निर्वाचन लड़ीथिबा टीभीके को सर्वाधिक आसन। बीजेपी विजय को ऐतिहासिक अभूतपूर्व बोली वर्णना कले प्रधानमंत्री। आमेरिकीय जहाजगुड़िक आक्रमण कले ईरान को कठोर परिणाम भोग करने को पड़े चेतावनी देले अमेरिका राष्ट्रपति। एवं आईपीएल क्रिकेट गतकालीर मैच रे लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट रे परास्त कला मुंबई इंडियंस। संवाद शेष होगा। अधिक संवाद न्यूज ऑन एआईआर .co.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एआईआर आप रे लॉगिन करी परिबे।
2: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु प्रभात परिक्रमा। प्रयोजना विनय कुमार सामंतराय उपस्थापना बैजयंती माला हरिचंदन।
3: नमस्कार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम वर्तमान रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान

0: के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर,

0: एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
0: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू

0: मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाए। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाए। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hailed

0: ଶୁଣିଥିଲି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୃତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 14ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଶୈଳଭାମ ମହାପାତ୍ର, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ତୃପ୍ତି ଦାସ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତିନୁ କୁମାର ରଥ। ସଙ୍ଗୀତ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତିନୁ କୁମାର ରଥ। ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରାମର୍ଶ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଜେନା। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲେଖ୍ୟ ରଜତ କୁମାର କର।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूँ। मेरा आग्रह है कि आप भी उसे अपनाने का प्रयास कीजिए।

0: आम आगे जाशुणी आपन को इनसल्ट करवा भारी भद्रामी ना सर
1: ना ना जिते आम प्रिंसिपल तो
0: चौकर मर्यादा सी जदि हरबे
1: से किसी करार ना कि कहार ना चौकी मर्यादा रक्षा कर लोक को चौकी निजे तड़ीदेव
0: न आपणकर एत गुड़ा गुडनेस मुझे सह्य कर पार्मी आजिकालीर उपरक उठबार ये मैड्रेस जुगे
1: से मैड्रेस जोगदे तुम्हें खुशी हूं तो
0: ना कितु न्याय दाबी हासिल करने चेष्टा करवा मैड्रेस नुहे
1: नुहे कि सुधीर तुम्हें कहीं ब्रत
0: आप बुझीपारे नहीं सार आप बुझीपारे नहीं आपल बुझे घंटा घंटा धरी पाठ पढ़ा आजिकाल दिग्भ्रांत उद्भ्रांत छात्र छात्री गुड़ा मुंडे गुड़ाए ज्ञान गुड़ाए सोशल एथिक्स भर्ती करदेव अद्यम प्रचेषा माकड़ गलार मुक्ताहार झुलेबार स्वप्न विशुद्ध बाली में फल फल बाकामी कितु कितु निज कथा केत भावती
1: सुधीर माय बॉय एत इमोशनाल हेले चलिबो तमे स्मार्ट मेधावी अन्नार प्रतिरोध करने को पछानी हेले तमे जेंती इमोशनाल
2: सर भीषण इमोशनाल
0: सर मत क्षमा करंतु मु कहिबो बाध्य होची आपण स्टोइक
1: स्टोइक मु स्टोइक नै सुधीर
0: नुहंती तो निज विषय एत उदासीन कहीं आप अन्याय विरुद्ध लड़े करना
1: को अन्याय विरुद्ध
0: डाक्टर सुशांत दास आपण विभाग मुख्य अथच सी आप छात्र
1: आश्चर्य हमारे कौन अच्छी मुझे यू बेस उपभोग
0: करपभोग कर आश्चर्य आपण चारि चार जन छात्र आपण उठीगले
1: चाहतु तुम्हें भी दिन मोर हेटे जापार माइ चाइल्ड आरे मो छात्र मैंने मत टपी जा तो मोप गौरव कथ
0: सार सर आप कौन मत कहे
1: सुधीर बाहर मत जहाँ देखी चो जाणी चो सेती कौन मो विषय जथेष नुहे
0: ना निज विषय आप इतने चुप कहीं
1: चुप कहीं
0: हाँ सर चुप कहीं
1: जाणी कौन खूब दरकार
0: आपण को जदि आपत्ति न था तबे अवश्य
1: जाणी परे
0: कौन हम आम जानूना
1: मै बयस तुम मान न जाणी भल
0: आप निचे अन्यार प्रतिरोध करें कि अन्य को देवे
1: सुधीर मु तो जाने तमें कौन गोटे जलंता निया पाख को सुखेला पत्र कागज ना ठीक नुहे
0: जहां जल्वा योग्य जारी दिजा उचित सर
1: हाँ उचित तो निश्चय
2: तेज सर आमको अनुमति दिं
1: समीर तुम मैंने कहीं मो प्रति अन्यार प्रतिरोध करने को जीव तुम्हें सब कलेज को कहीं आस
2: खाली कौन पाठ पढ़े सर
1: व्यक्तित्व गठन केवल पाठ पढ़ा हुए प्रशांत
2: अन्यार प्रतिरोध करा कौन व्यक्तित्व गठन गोटे दिग नुहे
1: निश्चय गोटे दिग
0: तेरे आम आप प्रति अन्यार
1: ना ना सुधीर ना तार प्रतिरोध मु करबा कथा तम माने नो सेटा तम मानकर समस्या ही नहीं
0: तबे प्रतिरोध करंतु
1: ना
0: ना
1: प्रतिरोध करी हारी जाई छी हारी जाई छी कहले ठीक हबो नै ओठे अन्नार प्रतिरोध करी मनुष्य जिते जोठे न्याय विचार अछि जोठे न्याय विचार राजनीति को नियंत्रण करे हां राजनीति एबे भी नियंत्रित आउ तांकर अदृश्य अंगुली निर्देश रे वर्ष वर्ष धरी मोर गुप्त चरित्र पंजिका नियंत्रित ही चली
2: से अदृश्य अंगुल चलना आम बंद कर दी पारे सर
1: हाँ से अंगुर परिचय पाइले हे तो पार प्रशांत मोर प्रश्न जो मैंने से अदृश्य अंगुल द्वारा परिचालित होती समस्त अबेकता को ध्वंस कर दे
0: पार बेक को नियंत्रण जे कर ध्वंस कले से बेक बुद्धि फेरी आस पारे
1: से जो कारण नियंत्रक निर्देश में परिचालित से कारणटार ध्वंस ही आवश्यक
0: कौन तेरे से कारणटा कौन सर
1: भय भय एम गोटे जिनस जहाँ मनुष्य बेक बुद्धि विचार मानविकता सबुर बेक मोड़ दिए
0: कि से भय कहीं हुए
1: भयर कारण खोजा खूब सहज सुधीर तल को खसी जावा कि जो अच्छी रही भय निच्छक स्वार्थ तेणु कहा साथ लड़ी मो प्रति अभिचार
0: आप रिजाइन कहीं करना ये पिस्थित आमको आग तो भल लगुनि सर प्लीज आप रिजाइन करूँ
1: तुम मैंने बुझीपर पे मुझे चाकरी छाड़ी कहीं मो छात्र तले रही श्रृंखलाबद्ध सैनिक टीपरी मोर कर्तव्य कर चली बयस मत विश्वास कर टा प्रतिपत्ति नुहे चाकरी छाड़देले खाली फायोलिन बजे मुझे यथेष रोजगार करथा मुझे कहीं पार नहीं

0: Kanjeng Baruni. Kanjeng Baruni. अच्छा तुमगुड़ा मो प्रति एत गभर ममता कहीं तुम मो दुर्दशार मर्माहत हो कहीं मो दुख करे
1: जो मैंने एकांत भय मोर गुप्त चरित्र पंजीका को कला कर दिखती जानती ए लोकटा को गला धक्का दे छात्र छात्री मान मुह छाड़ी पार्टी। दे आर राइट।

0: ओ मीरा, तो मैं तो जानू मीरा, मैं काहे की बाहर नहीं
1: जानी जी मो तम पाखरे थिले बहुत अगुरे चाकरी छाड़ियो को बाध्य करथेंदे किंतु
0: मैं चाकरी छाड़ देबी
1: तमे पारिबनी तमरो रिसर्च तमरो छात्र छात्री ए सबरो ममता तमे तुटे पारिबनी
0: पारिबी पारिबी मेरा जते दुख ले पारिबी मु निश्चय पारिबी मु निश्चय चाकरी के गोठा मारी छाड़ देबी
2: हां गोठा मारी कोडे छाड़ी दबो 10-15 वर्ष धरि सेई कथा त कहिछ मा थिला बेले केते थर त एंति चदी हेछ
0: नरहरी केतोले से ठिया हेलुई
2: को मीरा अछि जे का संगे कथा होतिलो
0: ना मीरा नाही तम मन को पई से आउ नाही
2: आ तम पई अछि नाही मुंडो खराब पई गलन तमरो जेते कहली मो माटा कथा मो पाखरे मने पकेबनी छाड़
0: नरहरी
2: हां
0: नरहरी
2: आउ नरहरी नरहरी आउ अछंती जे सुनिबे नरहरी मल्लेणी
0: तू तो दिन को 100 थर मरुछु पुणी चंगाए उठछु
2: चेंगा न होई कोन चारा अछि बेमारिया छुआटा दिहरे ताती खई फुटुची कहली एते करी आज कॉलेज जाइ नथिले कोन हेइ नथांता औषध धरे जाई छु
0: बेगी तो चली आसली मार को तो कहि जाइतले से कॉलेज नि परी से गला कहिंगी
2: जे मंगु नथिला मु पठै देली जोर करी के कोन करथांता घरे रहि जे इलाज कमे करिया को हबनी ताकु
0: ओहो ताहले मो ऊपर किटकिट कहिंगी सब तो निजे आबुरी बसीचु समस्त ऊपर त हाकिम करचु
2: भारी भूल कामटे करी पकौची पौला छुआटा को अनाथ करी मा चाली गला नहले मु ये तेलुणी पक मंदा को कोउ दिनु छाड़ी चाले जांतिनी
0: तेलुणी पक मंदा
2: नो आउ कोन दीटा छुआ को ऋषि भाल के पठे दे निश्चिंत तांको खबर अंतर बुझीबी मु माला को हजार खुशा मत से छुआ दीटा को पाख को चिट्ठी लेखि आगु इले कॉलेज रो आसीबो ता कथा बुझीबी ठुरा कथा बुझीबी तमर गोटे संसार अछि बोली भाभी छ मो मां भाबुतिला एबे मु भाबुची
0: मते कोन करबा कहुचु
2: तमकु बतई देबी मां तो पारलानी छुआ जन्म करथिलो काहे कि

0: मीरा तुम रक्त गढ़ा शिशु को मुझे अन्न हाथ को टेकी दे कौन भूल कल तुम कौन चाहून तुम ठुरा मार ममता आष्मता बढ़ु शोभा कौन ताक ममता से उष्मता दे पार मीरा से पार तार बुभुक्ष मातृ हृदय सब स्नेह से अजाड़ी दब तुम ठुरा उपरे मुनि ए लोभ सम्मरण करी तमें तो जान मीरा मो जीवन केत गुड़ा अद्भुत घटना समन्वय एक इतिहास
1: बाबा
0: क्षमा तू कत ठिया हो किसी भूल करनी मा
1: ठीक भी किसी करना ठुरा को मो मनीष कर ए वर्ष है किए पाली
0: तू मा तू किंतु ठुरा बढ़िया सांगे सांगे तार जंजाल बढ़ तोर कैरियर तोर भविष्य
1: से कथा मु बुझी था आपण मत पचारले भी नहीं
0: बहुत भाभी चिंत मु एक कथा कर
1: भाभी चिंती भाभी चिंती आपण छुआ को जन्म दे थिले भाभी चिंती आपण अन्य मान को बाट छाड़ देले आपण को सुपर सीट कर प्रोफेसर हवा को
0: तो बड़ उत्तक्त ही पड़ छु मा आ मो पाखो आ बो कोई तो न भाभी न चिंती तम मान को सृष्टि करी छी किंतु काहे की प्रोफेसर ही परले नी तार कारण तो तू जानू ज्ञान और गवेषणा आगे चाकर प्रमोशन टा मो आखिरे अति तुच्छ मन है कहते तू ठीक न्याय पर लड़े न करवाटा एक भीरुता किंतु ठुरा को शोभा कोल को टेक दिए मुझे भूल करनी
1: मो ठुरार मा स्थान पूरण कर
0: पारि था किंतु तथापि पार्थक्य अछि
1: मु जानिबा को चाहे कि पार्थक्य अछि
0: संतान माता न होई परिवार एक स्थिर निश्चित हताशा भितर हठात जो बात्सल्य ममता जगि उठे तार मूल्य बहुत बेसी मा
1: मुझे बात्सल्य ममता दे पार ना
0: मला जीवन रे गभीर तत्व बुझा को तोर बस है तो जीवन में जिते मातृत्व आसव से बुझु पार्थक्यटा
1: कौन ठुरा को छाड़बी
0: मुझे कथा चाहिए मा
1: ठुरा तेरे सब दिन पर विच्छिन्न हो पढ़ले सामक देखे कौन भाव बाबा
0: ता पिता माता कितने जन परिचित बंधु आत्मीय
1: बाबा
0: माय पुअर गर्ल जीवन अर्थ बुझा तो समय लगे नरहरी जीवन अर्थ बुझलानी ता निजपाई आज तू जहा भावु तोपाई एकांत सत्य और सुंदर कल की तू कौन ता भाईपर मा ये बयस तोर खेल हसवा तारुण्यर आनंद अनुभव करवा दरकार माँ

0: A death blow is a life blow to some who till the diet did not alive become. Meera, kitabale?
1: Tamara abriti shunatuli.
0: Bahutta sunija.
1: Kintu, eita shunatuli. A death blow is a life blow to some. पुणी आगे चली पारिबो त
0: खूब पारिबी
1: तबे से अथर्प चौकीटा रे काहे की
0: तमे त देखि छ ए अथर्प चौकीटा जेजे व्यवहार करथले
1: से तो पैरालिसिस रोगी थिले
0: मोर से मेंटल पैरालिसिस
1: की कोइला
0: मोर करथु पक माने लोग तो सेया विश्वास करले
1: तमे अथर्प पेंशन नेलो बोली
0: नै न थांदी
1: नै थांत
0: कहीं की तुम जानी
1: मोठू बस किए जाने किंतु ए अथर्प चौकीटार बस ए बारंडटार एमती संध्या बेले घूरी बुली बुली आवृत्ति कर पिला माने देखले
0: भाभी बा बापांकर मुंडो खराब हो जाइछि भाबंतु तांकर ए भावना भितरु जन्म नब आउ गोटे भावना मनुष्य प्रकृतर अथर्प हुए ना तार मन चिंता कार्य को अथर्प कर दिया जाए करके तार घुण्य परिवेश मीरा मोर व्यक्तित्व को जो मैंने बारंबार आघात कर पंगु कर दबा चाहती तमें से मान को घृणा कर
1: हाँ,
0: जो मैंने घृणा तांको सहित लड़े करिवार कौन पौरुष थिला
1: ना
0: अथच मु आहत हो रक्ताक्त हो मोर व्यक्तित्व जंत्रणा जर्जर हेछि मोर पुरुषकार
1: आउ तमर जंत्रणा को फुलेबा पाए मु
0: मो पाखर बसि मत भावलिन सुनै छ
1: सेइटा तमर दान तारी सुमधुर मूर्छना रे मु तमर वित्रस्त पक्ष को साउले देछि
0: मु तमको जो दान दिले ताको तमे आहुरि समृद्ध करी प्रशमित कल मोर आत्मिक जंत्रणा को मन पुटिछि मन पड़ी तुम भावलन शिखबार दिन गुड़िक
1: फुली केमी तुम भावलन शिखेबार ढंग गुड़ाक मोर विधेयी आत्मे जड़ी रही
0: बहुत पूर्व से दिन गुड़िक

0: कौन है ला?
1: हाथ चलुनि
0: मोर भी तो
1: स्नायु गुड़ाक ओसाड़
0: मोर भी
1: मोर सारा देहर स्नायु गुड़ाक निश्चल
0: मोर भी स्नायु गुड़ाक जमती स्थान अथर्व
1: हाथ उठे नी
0: ना ना पारिबो
1: ना पारुनी
0: उपाय
1: अच्छे आम घरे गोटे अथर्व चौकी अच्छी जेजे बाबा से बसुले मोटर बाइक नहीं आसपि
0: कौन हम
1: आम दी अथर्व से पखापाखि बस
0: दीज पखापाखि बस
1: सामने आड़ को जथे स्पेस मिल आगे बस पड़ी तापर
0: तमें भारी अभद्र मिस्टर बुद्ध
1: आम बर्तमान जमी बस भावले शिखुचे से
0: अभद्र बोझ नुहे
1: हाथ चलुनि जे
0: चलो
1: मीरा
0: बाबा
1: कौन मा
0: व्हील चेयर बस एम हसुच
1: देखु अथर्व चेयर टे बस कि फिलिंग हो देख ली मो देहटा कि असाढ़ गला अथच मनटा पूरा भरीगला आनंद हृदय जगेला अपूर्व फुलक पछकु फेरीगली बहुत पछकु सन्धार अंधकार भितर भाजी आसला भावलेन मधुर स्वर तो माँ हाथर
0: बाबा माँ को भूलवाक चेष्टा कर
1: मारे तू चार कहलु तो पिला बेले मो बाबा ना मत सब बेस भल पाती कहीं कहलु
0: जाने बाबा
1: तो माँ को भूल भी केमी देवे
0: ठुरा तो ठीक माँ भली देखा ताकु तो
1: ये अभिमान तोर जीवनी किंतु कहिस तो कहीं के मु
0: थाउ बाबा
1: मारे
0: बाबा
1: उड़ कथा पचार भी
0: पचार
1: सुधीर को कही सन्धार आस बाबू
0: से कालीर घटन भीषण भांगी पड़ी से अन्याय प्रतिरोध करने को चाहते
1: जाने मु करे दिल्ली
0: हुई तो सही तथा
1: तो से आसब ही विल
0: तमर पेट जे
1: मु तते थरे कही मन अच्छे कौन
0: सुधीर्घ विषय आमर खूब गभीर भाव चिंता करवा दरकार
1: करिछु
0: ना
1: ना
0: तमें तो करिछु बाबा आउ फिर कौन
1: से उत्प्रांत ईगलटार विकस्त परगुड़ा को साउणी देवार भार नहीं पार से किंतु सबुबले झड़र सामने ठिया हाबाक भल पाइब मो भी पछेबनि किंतु ता पछरे
0: जाने
1: मुनिश्चिंत एथर मु निर्भय मोर पक्ष विस्तार करी अग्निमा सूर्य आड़ को उड़ी जाए पारि मा चाहिए चाहिलु से जन्मटा आड़ चाहिलु
0: हाँ मेघ भितर झापसा देखा जा
1: This cool, sweet moon, now defeated by night, which crusts her with rain, cloud, and milk. Hard under her fast rising, set momentary light through every tree in the park, every bush, every pool, every thicket apparent. It meant to my blind sight apparent, and I can walk yet without danger or fright.

श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण का प्रति अर्थे बोल सर्वे आनंदे कबार जगत जननी भगवती माँ शारदा देवी का प्रति अर्थे बोल सर्वे आनंदे कबार

0: हे बलराम दास तू जगन्नाथंकर भक्त बोली जो गर्व भाव बहि मते अपमान करिछु मु आज कथा दउछि तते खाइबा को मिलिबो नाही तू बार द्वार बुलिबु ए श्री क्षेत्र धाम रे काली थौ तो राउ देखा मिलिबो नाही।
1: मा तुमे ए कोन कलो मा
0: अभिशाप जेतेबेले मा महालक्ष्मी देइछंती बलराम दास मांक पाद तले लोटी गले से सज्जा पाखरे हाथ जोड़ी देले कहले मा अदे बबा मरल मस्तु जुगांतरे बा जुग शेष रे मरी थांती आज मरिबी सेथि पाई मोर भय नाही। भागवत रे गोटिए पद अछि अरे देह बहिले निश्चय मरी गीता शास्त्र कहे जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत तस्मात परिहार्यर्थे न तं सचितु मर हसि कहले मा जन्म हले मरण टा सत्य से मोर दुख नाई कि सीता चरित्र लिखी नाई यह मोर सत्य आज माँ को अभिशाप को सुनी बलराम दास पहुंचे जाई बाईसी पहाच तले बाईसी पहाच तले ठिया होई पतित पावन भगवान जगन्नाथ को स्मरण पूर्वक कहुची आज बाई

कार्यक्रमर शेष गीत आ गले लग्जा कथाचित्रु कण्ठशिल्पी किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर अनुरोधकारी श्रोता खुर्तारू ओसिन।

0: ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: कस्टमर केयर तरफ़ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिबो। ए लिंक पर अथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
2: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: नारी महल

0: ଶୁଣିଲେ ନାରୀମହଲ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ

0: कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

0: wickets at Wankhede Stadium. Chasing the target of 229 runs, Mumbai Indians overhauled the score in 18.4 overs at the loss of 4 wickets. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, resulting in injuries to 3 Indian nationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे एक रिपोर्ट
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन सांस्कृतिक आदान प्रदान खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन

0: वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं

0: साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे कि समय परे।

श्रोताबंधु किसी एसएमएस आसी चलते देखा प्रथम एसएमएस टी पठाई प्रथम एसएमएस टी पठाई रंजन कुमार गिल कैलाश चंद्र गिल महम्मदपुर बिलहाट कटकु शुणा को इच्छा प्रकाश कर सोना मैना आलबम्रु बाबुल सुप्रियो गाई गीत रे मेघ तु शुणी जा तो दिग तु भांगी जा।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
2: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
2: तो श्रोताओ लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की, तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
2: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
2: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
2: जी,
1: लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
2: वो क्या?
1: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
2: जी,
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
2: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
2: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर

0: मैं आपसे शुरू करें
1: जी। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है
0: जी।
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
0: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
1: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा
1: जी।
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I eat.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को

0: उतरो गिर जाओगे।
1: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
0: क्यों, तालियां क्यों बजाएं हम?
1: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
0: अच्छा, तो ये बात है।
2: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
3: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
2: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
3: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
2: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
3: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल

0: कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
1: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
0: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हो?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
2: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

0: और वे 1945 तक जेल में रहे।
1: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
2: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है, उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
1: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
1: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: শুনিলে NCERT দ্বারা প্রায়োজিত কার্যক্রম।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: प्रचार करछु कार्यक्रम जुबवाणी।

0: समृद्धि आणंतु।
1: इफ्को नैनो सारर चमत्कारिता रे प्रत्येक चाष एवं चाषी समृद्ध हेबे।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनचुंदे आकाशवाणी कटक केन्द्र रो।
3: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या छटा मुख्य संवाद सहित मु आदित्य नारायण दास आपण मानको स्वागत करूछि। ओडिशार तृतीय रेल डिविजन भाव रायगड़ा रेल डिविजन जोन पहलू हेब कार्यक्षम। राज्य शिल्प प्रतिष्ठा और पुंजनिवेश आकृष्ट करने नहीं गुजरात गस्तरे मुख्यमंत्री। देश में गवेषणा नवसृजन परिवेश सृष्टि करने दिगरे सरकार प्रतिश्रतिबद्ध कहले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। विधानसभागुड़िकर कमिटी संपर्कित द्वितीय सर्वभारतीय बाचस्पति सम्मेलनी आज राजस्थान जयपुर चली। केन्द्रापड़ा जिलार गहिरमथा सामुद्रिक अभयारण्य ऑलिव रिडले कईछक विक्षिप्त अंडादान प्रक्रिया जारी रही। महान विप्लवी धरणीधर नायकों 162वीं जयंती अवसर

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

0: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यरंजन महापात्र मुख्य संवाद 5650 कोटी ऊर्ध टंकार कपा उत्पाद मिशन को केन्द्र कैबिनेटर अनुमोदन संख्यागरिष्ठता हासिल करथिबा दलगुडिक पक्षरु चारोटी राज्यर नेता निर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ मदनीति दुर्नीति मामलें सीबीआई दाखल करथिबा आवेदन उपरे प्रतिपक्षक पई आमिकस क्यूरी नियुक्त नै दिल्ली हाइकोर्ट घोषणा एवं आईपीएल क्रिकेटर आज मैच टॉस जीति बैटिंग करने को निष्पत्ति नेला दिल्ली कैपिटल्स देश में कपा उत्पादन मिशन कपास क्रांति को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन प्रदान करछि। नूआदिल्ली में आज गणमाध्यम को संबोधन कर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते देश में कपा चाषी उन्नति तथा उत्पादन वृद्धि लक्ष्य नहीं निष्पत्ति ग्रहण कर 5659 कोटी टंकार व्यय अटकल हो पदक्षेप द्वारा 32 लक्ष अधिक चाषी उपकृत हेबे। श्री वैष्णव कहते सरकार 5F दृष्टिकोण आधार में मिशन प्रस्तुत कर फसल उत्पादन क्षेत्र में आधुनिक प्रजुक्ति विद्यार बहुल उपयोग को मिशन प्रोत्साहन प्रदान करने सहित रोग एवं कीटपतंग प्रतिरोधक उच्च अमलक्षम विहन विकसित करिवारे सहायक हेबो बोली श्री वैष्णव कहते
1: 5659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्ते श्रोताओं, आज हमारी चर्चा के विषय है शुद्ध वाक्य के लक्षण। हमें इस बारे में शिक्षा देने के लिए हमारे साथ हैं गुरुजी कृष्ण कन्हैया आचार्य, उनके साथ है छात्रा राजलक्ष्मी नायक। तो चलिए सुनते हैं शुद्ध वाक्य के लक्षण क्या क्या है।
2: प्रणाम गुरुजी।
3: जीती रहो। अच्छा राजलक्ष्मी, पिछली बार मैंने वाक्य गठन के बारे में कुछ सूचनाएं दी, जानकारियां दी थी, उदाहरण दिए थे, याद है?
2: जी गुरुजी।
3: बहुत अच्छा, तो वाक्य गठन के क्रम में मैंने किन किन बातों की चर्चा की थी कुछ तो बताओ, तभी हम आगे बढ़ते हैं।
2: जी गुरुजी, वो तत्व है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा।
3: बिल्कुल सही। तो वाक्य गठन के क्रम में मैंने ये बताया था कि सार्थकता का होना जरूरी है।
2: जी।
3: अगर अर्थ न प्रकट हो तो वाक्य अनर्थ हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उसका अर्थ प्रकट नहीं होगा तो मूल्यहीन हो जाएगा।
2: जी गुरुजी।
3: ठीक, उसके बाद योग्यता की बात मैंने की थी।
2: जी।
3: और योग्यता का भी होना जरूरी है। अच्छा बताओ, योग्यता के क्रम में, योग्यता के लिए एक वाक्य बताओ जो अयोग्य हो, तब हम जानेंगे। और मैं याद दिला दूं तुम्हें कि उस दिन तुम हंसने भी लगी। हाँ, याद करके बताओ।
2: घोड़ा पानी पीती है।
3: हाँ बिल्कुल, घोड़ा पानी पीता है, ये सही वाक्य है। ठीक है, लेकिन अगर घोड़ा घास पीता है कह दिया जाए तो वो अयोग्य होगा या योग्य होगा? घोड़ा घास पीता है, ये वाक्य अयोग्य होगा या योग्य होगा?
2: अयोग्य होगा।
3: बिल्कुल अयोग्य होगा, क्योंकि यहाँ योग्यता नहीं होगी। उस दिन इसीलिए तो हंसी थी ना।
2: जी गुरुजी।
3: हाँ बिल्कुल। तो योग्यता, हमने सार्थकता, योग्यता और आकांक्षा को भी, जब भी कभी हमारे मन में कुछ रुचि हो, जिज्ञासा हो, तभी अर्थ प्रकट हो सकता है। अगर जानने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वाक्य अधूरा रह जाता है, यही जानकारी मैंने दी थी।
2: जी गुरुजी।
3: अब आगे चतुर्थ आधार जो है वो है निकटता, और उस दिन हमें समय नहीं मिल पाया था, मैं विस्तार से आज उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वाक्य के अर्थ बोध के लिए शब्द के परस्पर निकटता अत्यंत आवश्यक है। समझ पाई?
2: नहीं,
3: नहीं समझ पाई। हाँ, उस

0: दिन भी नहीं समझ पाई थी, मैं इसलिए विस्तार से बता दूं। राजलक्ष्मी पढ़ रही है, ठीक है, एक वाक्य है
1: जी।
0: अगर मैं ये बात बताऊं राजलक्ष्मी, उसके बाद एक घंटे तक मौन रह जाऊं, ठीक, एक घंटे तक, फिर मैं बोलूं पढ़, फिर एक घंटे तक मौन रह जाऊं, फिर बोलूं रही, फिर एक घंटे तक मौन रह जाऊं, फिर है बोलूं, तो इसका अर्थ प्रकट हो पाएगा?
1: गुरु जी इसका तो समझ भी नहीं आएगा।
0: बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कैसे आ सकता है कि नहीं
1: जी?
0: क्योंकि कोई तीन घंटे चार घंटे तक एक वाक्य सुनने के लिए इंतजार करेगा क्या?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो इसलिए अब जोश आया, ठीक है, इसी तरह नहीं इंतजार करेगा। तो ये वाक्य में निकटता जो है, आसक्ति जो है, वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: लेकिन एक बात और है कि जब हम बलाघात का प्रयोग करें, विराम चिन्हों का प्रयोग करें, तब कहाँ रुकना है, कहाँ विराम चिन्ह देना है, कहाँ थोड़ा रुक के बोलना है, ये अलग आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं कि मैं अगर रुक रुक कर न बोलकर लगातार बोलने का प्रयास करूं तो सभी समझ जाएंगे, लेकिन स्वाभाविक ठहराव और बलाघात के लिए रुकना जरूरी है। जैसे एक वाक्य अगर मैं कहूं, कोई चला जा रहा है, मैं बोलूं राजलक्ष्मी रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक अर्थ में बताओ वाक्य का अर्थ क्या समझ पाई? मैं क्या कहना चाहता हूँ?
1: कि आप मुझे रोकना चाहते हो?
0: नहीं, मैं तुम्हें उस व्यक्ति को रोकने के लिए आदेश दे रहा हूँ, यही ना?
1: अच्छा।
0: क्योंकि राजलक्ष्मी उसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति चला जा रहा है
1: जी।
0: और मैं बोल रहा हूँ जाओ उस व्यक्ति को रोको, यही ना?
1: जी गुरुजी।
0: अगर यही मैं जरा बदल दूं और अपना बलाघात ऐसे दूं कि राजलक्ष्मी रोको मत जाने दो, अर्थात तुम वहाँ रोकोगी या जाने दोगी?
1: जाने दोगी,
0: जरूर जाने देना है। तो पहले वाले वाक्य में रोकना है, दूसरे वाले वाक्य में जाने देना है, ये कैसे संभव हुआ? बात तो वही है, और शब्द भी वही है, रोको मत जाने दो, यही है। रोको एक शब्द या वाक्य में अगर प्रयुक्त कर देंगे तो ये पद कहलाया। रोको एक पद है, मत एक पद है, जाने एक पद है, और दो एक पद है, यही तो चार पदों से ये वाक्य बना है। लेकिन बलाघात के कारण इसका अर्थ अलग अलग हो गया, एक में रोकने की बात आई, दूसरे में बिना रुके उसे जाने देने की बात आई।
1: जी गुरुजी, समझ गए।
0: बिल्कुल, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए, अब तो समझ में आ जानी चाहिए।
1: जी गुरुजी।
0: पांचवा आधार है पदक्रम। क्या है पदक्रम?
1: गुरुजी पदक्रम क्या है?
0: हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वाक्य के शब्दों में एक क्रम का होना जरूरी है, प्रत्येक भाषा में यह क्रम भिन्न भिन्न है।
1: जी गुरुजी।
0: तो कैसे? अगर राम पाठ पढ़ता है, हिंदी भाषा की अपनी वैकरणिक विशेषता है कि कर्ता जो है वो पहले लगता है, फिर कर्म का प्रयोग होता है, फिर अंत में क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। राम पाठ पढ़ता है, सीता गीत गाती है, तो सीता कर्ता है, गीत कर्म है, गाती है क्रिया है। लेकिन अगर उसे अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करेंगे तो पहले कर्ता और सीधे उसके बाद क्रिया का प्रयोग हो जाएगा
1: जी,
0: नहीं
1: जी।
0: तो अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रयोग होते हैं
1: जी।
0: जबकि उड़िया भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी समानता है, क्योंकि ये दोनों सम स्रोत की भाषा है, ठीक है। तो हम उस क्रम का अनुसरण न करने पर कथ्य कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है
1: जी।
0: तो अगर हम जो बोलना चाहते हैं उसका अर्थ अलग निकल जाएगा अगर उसमें क्रम न हो। अगर कथ्य का अर्थ तो जानती हो? कथ्य
1: नहीं गुरुजी, कथ्य का अर्थ नहीं जानती।
0: लक्ष्य उद्देश्य उसे कहते हैं कथ्य, ठीक है। तो योग्यता और आकांक्षा के तत्वों को मैंने बता दिया है अच्छी तरह, लेकिन यह तभी पूर्ण हो सकता है जब पदक्रम का भी सही प्रयोग हो। अगर पदक्रम गलत हो जाएगा तो इसका मूल अर्थ बाधित हो जाएगा। मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ
1: जी।
0: है चुके आ सभी, मैं कहूँ है चुके आ सभी, ये वाक्य सही लग रहा है?
1: नहीं गुरुजी।
0: नहीं लग रहा है?
1: नहीं।
0: क्योंकि ये शब्द समूह तो है लेकिन इसका अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है?
1: नहीं गुरुजी।
0: क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसमें पदक्रम नहीं है। इसे सजाकर उचित पदक्रम में बता सकते हो राजलक्ष्मी
1: जी?
0: कोशिश करो, कोशिश तो करो कम से कम। है चुके आ सभी, उसको अगर हम ढंग से पदक्रम के अनुसार बोले तो क्या कहेंगे?
1: सभी आ चुके हैं।
0: देखो सही कहा, पहले से भयभीत हो जाती हो, उसे प्रयास करना है, ठीक है। बार बार मेरा प्रयास करने के प्रति आग्रह है। तो ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, यह एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है। पदक्रम का होना जरूरी है। अगर कोई भी खेल रहा मैं हूँ, वाक्य पूरा लगता है?
1: नहीं गुरुजी।
0: मैं खेल रहा हूँ, यही तो। खाना खा वह है रही, बाकी है अर्थ प्रकट हो पाएगा इससे?
1: बिल्कुल नहीं।
0: वह खाना खा रही है, इसलिए क्रम का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और अब जो एक वाक्य के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, छठा या

0: अंतिम आधार, अंतिम तत्व मैं बता दूं, यह बहुत ही व्यावहारिक है, वह है अन्वय, या फिर अन्वय को हम कहते हैं मेल।
1: गुरु जी, अन्वय क्या है?
0: हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अन्वय को हम मेल कह सकते हैं। मान लो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के साथ क्रिया का जो समन्वय होता है उसे हम अन्वय कहते हैं।
1: जी।
0: अगर राजलक्ष्मी जाता है, आकेश सही होगा क्या? लोग हंसेगा नहीं?
1: जी गुरु जी, हंसेंगे।
0: क्योंकि यहाँ लिंग स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर वचन के रूप में है, राम और श्याम जाता है, बाकी अच्छा लगेगा क्या?
1: ना।
0: बाकी में सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ वचन की गलतियाँ हैं। ठीक उसी प्रकार पुरुष है, पुरुष मतलब जिसे हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, उड़िया में भी प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष नहीं कहते हैं
1: जी,
0: तो हिंदी में उसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। तो पुरुष की भी आवश्यकता है। कैसे? अब वह पढ़ रहा हूँ, वाक्य सही लगता है तुम्हें?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो क्या शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? वचन की शुद्धता मैं के पास हूँ लगता है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वह पढ़ रहा है, यही ना होना चाहिए?
1: जी।
0: तो यहाँ वचन की भी आवश्यकता है, ठीक है, पुरुष की भी आवश्यकता है, अच्छा काल की भी आवश्यकता है। अगर मैं कहूँ, अगर तुमसे मैं पूछूँ कि तुमने क्या खाया और तुम बोलोगे मैं ये खा रही हूँ, तो मैंने पूछा अतीत काल के बारे में क्या खाया था, तुम उत्तर दोगी वर्तमान काल में, तो इसका अर्थ प्रकट नहीं हो पाएगा। तो काल की भी आवश्यकता है। अगर कोई वाक्य में ऐसा कहे मैं पिछले महीने कटक जा रहा हूँ, कैसा लगेगा वाक्य बताओ? मैं पिछले साल या पिछले महीने वैष्णो देवी जा रहा हूँ, अच्छा लगेगा वाक्य? सही हो पाएगा?
1: बिल्कुल नहीं गुरु जी,
0: क्योंकि पिछले साल गया था, ये हो सकता है, लेकिन आने वाले समय भविष्य के लिए जाऊंगा और वर्तमान में जा रहा हूँ, ये होना चाहिए
1: जी।
0: तो काल की भी आवश्यकता है। वाक्य गठन करने के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता है। अगर कहीं भी गलती हो जाए तो उसका सही अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार और एक महत्वपूर्ण तत्व है कारक का होना हिंदी में, ठीक है, उड़िया में कारक का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी में कारक का भी प्रयोग होना बहुत जरूरी है, जिसमें हम कर्ता कारक का प्रथम जो महत्वपूर्ण चिन्ह है विभक्ति, वो है ने। हिंदी में ने का प्रयोग होता है कि नहीं? तो हनुमान जी हूँ कहते थे, और हम मनुष्य है तो हमें जी कहना है कि नहीं? हूँ अगर कहना है तो जब जोश में भर जाए मनुष्य, तब तो हूँ नहीं, हमें जी कहना है एकदम पूरा
1: ना,
0: पूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है, क्योंकि हम वाक्य गठन कर रहे हैं।
1: जी गुरु जी,
0: हूँ भी चल सकता है, सांकेतिक ध्वनि बन सकती है, लेकिन हमें तो अभी वाक्य गठन पर पढ़ना है। हाँ, तुम शायद इसी चीज को सीखने के लिए हूँ बोल रही थी, ताकि मुझे बोलना पड़े, ठीक है?
1: जी गुरु जी।
0: तो प्रयास अच्छा है। तो इस प्रकार अगर ने का प्रयोग भी उतना ही जरूरी है, सभी चीजों का, कहीं भी एक की गलती हो जाएगी तो वाक्य का प्रयोग ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर ने का प्रयोग अतीत काल के चार भागों में होता है, कहाँ होता है?
1: चार
0: भागों में। किस काल के? अतीत काल के। ने का प्रयोग ना तो वर्तमान काल में होता है, ना ही भविष्य काल में होता है, ठीक है? मैंने पाठ पढ़ूंगा ऐसा नहीं होता है। कभी सुना है वाक्य कहते हुए किसी को मैंने पाठ पढ़ूंगा?
1: नहीं गुरुजी।
0: और जो गलत वाक्य होता है वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, पता चल जाता है कि ये अशुद्ध वाक्य है
1: जी।
0: तो इसलिए ने का प्रयोग होना, सही प्रयोग होना भी उतना ही जरूरी है। तो राम ने पाठ पढ़ा, ठीक है, और अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं होता। मैंने कटक गया, मैंने पुरी गया, ऐसा वाक्य कभी सुना है?
1: बिल्कुल नहीं।
0: मैं पुरी गया, तुम कह सकती हो मैं पुरी गई, लेकिन जाना क्रिया अकर्मक है और अकर्मक क्रिया के पास ने का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है? एक नियम बना ने के प्रयोग के लिए। ने के प्रयोग के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को जानना भी उतना ही जरूरी है वाक्य प्रयोग के लिए
1: जी।
0: तो वो क्या है? पहले ने का प्रयोग कर्ता के पास ही होता है।
1: अच्छा जी।
0: एक उदाहरण बताता हूँ मैं, राम भात ने खाया, वाक्य सही होगा?
1: नहीं,
0: नहीं होगा, नहीं। लेकिन राम ने भात खाया, वो सही होगा कि नहीं?
1: हाँ।
0: बिल्कुल सही होगा। तो राम कर्ता है तो कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है, ठीक है, अन्य कर्म के पास ने का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं कहूँ राम ने न करके राम भात खाया ने, तो क्रिया के बाद में ने का प्रयोग कर सकते हैं?
1: नहीं,
0: नहीं कर सकते। तो केवल कर्ता के पास ही ने का प्रयोग होता है, ये ने के प्रयोग का पहला नियम है। दूसरा नियम है, ने का प्रयोग अतीत काल या भूत काल में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है, वर्तमान काल में या भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने वाक्य गठन के क्रम में यही जानकारियां हासिल की कि इसके जो 6 अनिवार्य तत्व हैं उसे जानने की जरूरत है।
1: जी।

0: पहले सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आशक्ति, पदक्रम और अन्वय। ठीक है, अब घड़ी हमें जाने का इशारा करने लगी, चलो चलते हैं।
1: जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी।
0: जीती रहो।
2: अभी आप लोग सुन रहे थे शुद्ध वाक्य के लक्षण के बारे में। हमें शिक्षा दे रहे थे गुरुजी कृष्ण कन्हैया आचार्य, उनके साथ थे छात्रा राजलक्ष्मी नायक। तो आज की हिंदी शिक्षा कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।
3: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
4: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, इसकी रिलेवेंसी क्या है।
3: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
4: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
3: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही

0: मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
0: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
0: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी

0: मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपये 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व

प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तोलाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ

0: स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में टी20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Centre approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupees ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
1: The scheme aims to develop high-yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large-scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost cotton production to 498 lakh bales by 2030-31. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. The minister shared that the scheme aims to provide credit guarantee support to help businesses.

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: भई जगत जननी जगत जननी दुर्गांकु आमे ध्यान कले विद्यार अधिष्ठात्री जे होउचंती शारदा से शारदांकर पद पंकजरे गोटी पद आमे निवेदन करिबा तापरे आमे गंतव्य पथर पथिक हबा
1: अच्छा
0: हेले बाबुरे
1: हा हा

0: बाबू राम भक्त कहिला
1: अच्छा
0: अरे निर्बोध सबुठारु होचंती मो प्रभु बड़ राम होचंती आग कृष्ण होचंती पछे राम नाम सुधा पाने सुस्थ हुई जानती जोगी माने मोरा मोरा कही रत्नाकर वाल्मीकि हेगला ए बाबूरे पुणि हेची कौन पितृ सत्य पालने तत्पर अटंती जे कि प्रभु रामचंद्र रामचंद्र पितृंक कथा को माने बापांक कथा को माने 14 वर्ष वनवास से हेले हेले महत पुरुष जे कि राम राम कौन करिसंती तांकर जो महत्व कृति चरित्र अछि तांको सहित तम कृष्ण समान हेबे ए कथा कहंते कृष्ण भक्त राग रे जळी गले कले चंडाल तते किछे जणा नाही रे
1: नाही
0: हेले कृष्ण भक्त कहिला
1: कौन कहिला

0: पहिला कला को जदी कहुछु आगो टिके रूफलाटा को लक्ष्य करे फिरे चंडाळ पुतना को जदी मारिले बोली किरी कहुछु ताड़का नामटा को टिके दृष्टि पका महाप्रभु जेतेले विश्वामित्र चली गले
1: अच्छा
0: ऋषि यज्ञ रक्षा करबा पाई हेले बाटरे हल्ला को उधार कले ताड़की बद्ध कले यज्ञ उधार करी मिथिला रे पहुंची शिवधनु भांगी सीता को विवाह करथिले ए भले प्रभु जे की रामचंद्र मोर ठाकुर केडे बड़ कथा तू कहुचु रे ए कथा जेते बेले कहिले कृष्ण भक्त कहिला कृष्ण

0: राम भक्त कृष्ण भक्त विवाद लागिले जी होउचंती राम सी होउचंती कृष्ण
1: अच्छा
0: जण जायकर विवाद सरीगला रात्र हेई पाहीगला
1: अच्छा
0: हेले राम भक्त जी होउचंती राम सी होउचंती कृष्ण
1: अच्छा
0: राम भक्त कृष्ण भक्त विवाद होइला संपूर्ण।

0: ओम भीमस्या पिराणे भंग मुनिरपि मत्ति भयम जदि सुधा मसुद मम दोष न विद्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
1: ଶୁଣିଲେ ଦାସକାଠିଆ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଠ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମର୍ଥ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवे चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की।

0: भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमा के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, आजर अंतिम मुख्य संवाद सह मु सत्यरंजन महापात्र। 5,650 कोटीरु ऊर्ध्व टंकार कपा उत्पाद मिशनकु केन्द्र क्याबिनेटर अनुमोदन। सुप्रीमकोर्ट संशोधन बिल 2026 मिलला केन्द्र क्याबिनेटर मंजूरी, फळरे सुप्रीमकोर्टर विचारपति संख्या वर्तमान 33-37 वृद्धि करिव। संख्यागरिष्ठता हासल करथिबा दलगुडीक पक्षरु चारोटी राज्यर नेता निर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ। पश्चिमबंग एवं आसामरे विधायक दल नेता निर्वाचन पई बीजेपी पक्षरु केन्द्रीय दलीय सहपर्यवेक्षक भावे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक करागला निजुक्त। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक नेतृत्वरे गुजरातर अहमदाबादरे उच्चस्तरीय निवेशक सम्मेलनी अनुषित, कहिले भारतर पूर्वांचलक समृद्ध करिब ओडिशा। सहरांचल बन्या मुकाबला पई ओडिशा सरकारको मौसुमी 2026 निर्देशावली जारी। ग्रीष्म प्रवाह ओ कालबैशाखी पई शक्ति विभागर प्रस्तुतिर समीक्षा कले उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह देव। ग्राहक सेवा ओ सुरक्षा उपरे कले गुरुत्वारोप। वर्तमान कोरापुटकु दिनिकिया गस्तरे जाई विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन कले राजस्व ओ विपर्य परिचालना मंत्री एवं राज्य आईन पूर्त ओ अबकारी मंत्री। जून पहिलारु कार्यक्षम हेबो रायगुडा नुआ रेल डिभिजन एवं राज्यरे कालबैशाखी प्रभावरे वज्रपात सह वर्षा हेबा नै प्राय समस्त जिल्लाकु पाणिपाग केन्द्रर सतर्क सूचना जारी। आजर मुख्य संवाद समाप्त होला। नमस्कार।

0: ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ତମେ ବଡ଼ ହୁଅ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ମନରେ ଆଶା ରଖିଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ଲିଡର ହବା ପାଇଁ, ଭଲ ନେତା ହବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅ ହେଲା।
1: ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
2: କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ପିଲେ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍କୋଡ୍ 753001। ପିଲାଏ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଠିକ୍ ସକାଳ 7:25ରେ। ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ତମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ସଂସାର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶେଷ ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला।
2: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କରୁଣାକର।

0: रास्तारे गाड़ी पाई सीएनजी हो कि रोसई घर पाई पीएनजी।
1: गेल इंडिया लिमिटेड नहीं आसी छी भरोसा योग्य अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई। एहा हेउची सुरक्षित लाभदायक ओ दीर्घस्थायी सफा सुतरा पीएनजी सबु रोसई घर पाई सबुठु भलो चॉइस। ना सिलिंडर चिंता ना बारंबार बुकिंग करिवार टेंशन। सीधा सड़क पाइप रो सप्लाई सुविधाजनक भरोसा योग्य ओ सुरक्षित सेवा जहां आपनको प्रत्येक दिन को कराए आरामदायक आपनको घर रेस्टोरा एवं अन्यान्य व्यवसाय पाई सबुठु भल ऑप्शन आज ही पीएनजी अपनंतु।
0: पेट्रोलियम ओ प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार तथा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनहित रे जारी।
2: प्रतिभा शुभेच्छा बंधु आसी जाइछु पुणि थारे आपणक पाखकु मु नमिता आपणक पसंद रे साथी आउ मु जस्मिन साथी रे आनिछु आपणक प्रिय आउ परिचित
3: आपणर आउ आदरर कार्यक्रम मो पसंद।

0: तेरे साथी एमती सुंदर सकाळर झुमाझुमा बेळारे आरंभ करिदबा आपणक सहित मधुर आलाप
1: आउ मनछुआ गीतर जुगळबंदी मो पसंद
0: देखिनबा की अछंती आम साथी आम पाखरी पुनी फोन कॉल रे।

0: भक्ति तो अंग दासी तर रत्न सिंह तन तले बोझ।
1: बहुत बढ़िया गाइले टिकी नेट
0: दे तुलसी
1: टिकी नेटवर्क प्रॉब्लम जो कट कट सब बुझी किंतु आपण बहुत बढ़िया गाउछंती
2: कि सुंदर गाउछंती आपण कोठी गीत सिखुतले अगुरु कोठी बोलंती सब गीत
0: स्कूल रे गारे स्वामी जी मना के मा पढ़ी लाय वाले
2: आपण स्कूल ले गांती माने स्कूल ले आपण टीचरशिप करथले कि
0: ना ना स्कूल ले टीचरशिप कर नथले म
2: पढ़ीला बळ ठरे आपण स्कूल ले गांती आ सबडे जानती काया पे एबे पुनी से डा आरंभ करंतु मतलब
0: जारी
2: रखते
1: कला
2: बहुत भल लगे धन्यवाद
1: कह दियंतु कौन गीत शुणी
2: मो पसंद रु
0: भजन टाइम कला ठाकुर पादे गुंगुरा

0: रास्तारे गाड़ी पाई सीएनजी हो कि रोसे घर पाई पीएनजी।
1: गेल इंडिया लिमिटेड नहीं ऐसी ची भरोसा योग्य अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई। एहा हे उची सुरक्षित लाभदायक ओ दीर्घस्थायी सफा सुथरा पीएनजी सब रोसे घर पाई सबठो भलो चॉइस। ना सिलिंडर चिंता ना बारंबार बुकिंग करिवार टेंशन। सीधा सड़क पाइप रु सप्लाई सुविधाजनक भरोसा योग्य ओ सुरक्षित सेवा जहां आपणको प्रत्येक दिन को कराए आरामदायक आपणको घर रेस्टोरेंट एवं अन्यान्य व्यवसाय पाई सबठो भलो ऑप्शन। आज ही पीएनजी अपनंतु।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार तथा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनहित रे जारी।
2: पत्रटिए नुहे फुलटिए प्रिय पाखुड़ारे अच्छे तुमरी ना
3: ए फुल रंगरे प्रीति जे भरिछि हृदय साईतिबो ताहा
2: लेखिछंती गोविंद बेहरा डांगमाल केन्द्रपड़ारु।
3: जननी जठरु देखिली दुनिया सिखिली मार भाषा टिकी उठे मोर अस्पष्ट शब्दरे पूर्ण कली मा आशा
2: धोरे पाइया धो गीतरे बोध हेला मोर मन आ जन्ममामु शरद शशीरे देखिली भाषार चिन्ह
3: आई मार ढग ढमाळीरे बुझिली भाषार।

0: ए तुकर आज करे गाउ जाउनु काई तो बेस किछ वर्ष बा गाँव में देखुनी।
1: अरे भाई सरकारी चाकरी रे तो उड़ीसा सारा घुरुचे
0: ताछड़ा
1: जानी सुनी मामू घर को जाउनी फरे 7 वर्ष हबो
0: जानी सुनी जाउनु माने
1: तू तो सांगटा तो पाखे लुचे के लाभ कौन सत कह को गले खाली मृत्यु पापर अभिमान करी मु मामू घर को जाइनि।
0: अरे तू सिना गलुनी हेले तोर से नजीवाटा बिचारी मृत्यु जीवन रे भयंकर विपर्य आनी देछि ता भाग्य तक उपास कर वास्तविक ता कथा भाबले फेर दुख लागे।
1: कोन तो कहू छु मदन मृत्यु पा जीवन रो विपर्य मो पई मो अनुपस्थिति पई
0: तोर मन अछि तू थरे आम गाँ ड्रामा रे रोल करथुलु।
1: अरे हां से कथा कोन सहज भूली परबी जीवन रे सेई गोटाए अभुला स्मृति
0: से दिन मृत्यु जमी भाव निजक सजे ड्रामा देखा आसला मुझे आप आड़ को टाणी होली दिन मुझे भाव ठिया
2: मदन मुंत तो तम पाखर एभ व्यवहार आशा कर
0: मन कथा खोली कह संकोच करनी यहाँ मोर अपराध
2: स्पष्टवादी तक मुझे पसंद कै तार अर्थ नुहे कथा कहार शिष्टता भूली तमें मन खोली मो आगे जहाँ प्रकाश कल से तम भितर पशु को मो दृष्टि सामना को नहीं आसला।
0: विश्वास कर मितु आम ए गाँव रुआ झी पाट दिन परस्पर को जाचु कहीं कौ आदिम काल मनुष्य प्रवृत्तिर दास हो आतु पाइबा दिन मो मन भितर गोटे निश्चिंत सिद्धांत कर सारी आज से भाषा जरिए प्रकाश पाला एतिके छलना कपट ना
2: तुम्हें हूं तो बेकर निर्देश मानिन प्रवणतार बाचाल हो पड़
0: ना मितु बे स्थिर और सुस्थ मन सिद्धांत
2: किंतु सेटा तुम एकतरफा सिद्धांत गाँ पा बोली कथा शुणी सारे नीरव रोचे आग को बढ़ले तुम क्षति
0: हमारा फेरी
2: जाशु निया छुईले हाथ फोटका हवा तो स्वाभाविक मदन एत पाठ पढ़ी ये सामान्य कथा बुझी पार न
0: तुम पुणी थे चिंता कर मितु समय चली जाए हे तो तुम प्रतिकूल मंत्य तुम जीवन को ज्वालामय कर आशंका थे
2: धमक दौ भाविच आशंकर कथा कही मत दुर्बल करदेव मन रख मदन ए मन आत्मा जनक पाखे बंधा रही ऋणमुक्त हबार आशा ना एणु तुमको शिशुपाल हाक पड़ो
0: शेष
2: देख मदन एजित हबार कौन कारण ना पादी आम परस्पर को जाचु बोली कह मो स्वभाव केमी तुम कौन जापार मुझक भल पाए ताे मन खोली सब कथ सरल भाव कही दिए जहा सहित मो मन मिसे अनेक दूर रहे
0: से माखनमा माइचा शुभ कौन तुमको तो भल लगे से पा तुमको बयस तो बेस मिशिपार
2: मो व्यक्तिगत रुचि कथ तुम्हें कहीं शुभ को आक्षेप कर
0: सवधान कर दूसरी मितु शुभ ए गाँव रिना नुहे सहित घनिष्ठ आम गाँव रिना हम
2: तुम्हें आगे निज कथ बुझ मदन सारा गाँव रायित्व निज मुंड को नौ कहीं
0: शेष कथ कही कल पर्यटन तुम स्वीकृति को अपेक्षा करी न पाइले मत आम दायी कर
3: मदन बाबू आए मारी नेले महापात्र चाई चाई जलका क्यों तम पी वीर पुंगव गाँव मजबूत ताऊ ताऊ आए उठा भर उठा आसी फुलर मऊ शसी नेला
0: कथा खूब गुरुतर है माने यार किछुटे माने निष्पत्ति नहले
3: क्यों आपणा सुनापा भेंडी आउ निष्पत्ति करिवो कोन छेना गुड़
0: मृत्यु बापा आगे कथाटा पकई आगो तांकू तांकर जबत करे पड़ियो।
3: हयो मदन बाबू देखुच काठ पोछुच चंदन आए मृत्यु बापा को कहले से कोन करिवो क्यों से परा ए गांर सरपंच चुटी तो ता दे आए देखिनो सुपर मामू माधव केमती ता पाखे ने ने होय।
0: अरे ताले पंचायत रखा अरे तुम्हें तो अधिकारी न्याय निशा नोटिस दियो देखा शुभ कमी गाँव मटि
3: आए क्यों मदन बाबू आए गरम पानी दे कि घर पुरी पारे तमें सीना तुच्छा को वाया हौच हेले जेते सभा समिति करो जेते न्याय निशाप करो निकिति ओजन निश्चय दंडी मरा हाब शेष को चिन्ह पड़ब यचरा निरीह अधिकारी
0: तुम्हें किए अधिकारी गोटे झी को तो तुम जबत कर पार न।
3: अरे बाबू सेमती छानिया हेले कौन किसी मदन बाबू तमें टिके अनिशा कर था थे पदों तोला बोलवा आरंभ हेले साप आपणा मन को गातरु बाहरी नांगुड़ टेक
0: कितु आबे शुभर मामू जदि भणजा पक्ष नि तो मो आशा।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଟକ ମିତୁ ଅପା, ମୂଳ ରଚନା ସାତଗଡ଼ି ହୋତା, ପ୍ରଯୋଜନା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ, ସହଯୋଗିତା ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମେହିର କୁମାର ଦାସ ଥିଲେ ଶୁଭପଥ ଭୂମିକାରେ, ମଦନ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ବଡ଼ବାବୁ ଦିଗମ୍ବର ଥିଲେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ ଥିଲେ ନଟ ଭୂମିକାରେ, ଛୋଟଶୁଭୁ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ପର୍ଶୁରାମ ସୁନ୍ଦରା ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭୂମିକାରେ, ଜନ୍ମେଶ୍ୱର ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭୂପତି ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ସୁରେଶ ଭୂମିକାରେ, ଗୌରୀ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଜୟଶ୍ରୀ ବ୍ରାଉନ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା କାନୁନଙ୍କ ଥିଲେ ଛୋଟମିତୁ ଭୂମିକାରେ, ଓ ମିତୁ ଉପା ଥିଲେ ଝରଣା ଦାସ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: অজানা লিঙ্ক ক্লিক করন্তু নাই। সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন 1930 মনে রাখন্তু। এসবিআই সচেতন রুহন্তু, সুরক্ষিত রুহন্তু।
1: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: चिक चिक चिक चिक, हिच पिच हिच पिच।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: चिक चिक चिक चिक।
1: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा?
1: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: পরবর্তী গীতটি গাইছেন দ্বৈত কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ সিকদার।

0: ज्ञानी महोदय माने जरासंध को भय कर कृष्ण मर कंस मरा कृष्ण समुद्र भितर गोटे राज्य तैयारी कले जार नाम है द्वारावती केमिति विश्वनाथ बर्मण रुक्णी प्रणाली कहले लंकालका निर्जर राजधानी निर्माण मसी किलस्त एक तुष्ट विशंके नगरी विधातु सभापति द्वारका नाम धेय विश्वकर्मा लंका गढ़ला अलका गढ़ला अमरावती गढ़ला तीन टा राज्य गढ़ी सरला पर पट्टवत आसीगला सब गुराक कारुकर्ज नहीं ये द्वारावती की गढ़ला
1: सुंदर करी गढ़ी द्वारा
0: सौंदर्य नगरी राजा किए
1: रामकृष्ण भगवान
0: अजोग्य से कवि सम्राट भंजम लिखिले कौन कहले सुदेव नंदन तही जादव प्रसिद्ध।

0: कहले प्रभु
1: प्रभु
0: तुम आठटा राणी अच्छा पाट राणी रुक्मिणी पद दुटा आण
1: ठीक
0: पद बाजिगले नर्क कुंड पोति दब नारद कहला हाउ ठीक अच्छे मुझ जा सभा भांगिक आसवि तमें बसीता रुक्मिणी पद चाणी तुम देखे नर्क कुंड तुम पोतव कृष्ण कहे सभा भांगी नारद ये विचार कले
1: कहीं
0: कलिया लोक चारिपटे चिलिका मझे पारि कुदुगड़ा डक्टर माधव मानस लिखिले धूप काव्य कौन लिखिले कली खोजु नारद मुनि
1: खोजु हर घर
0: भूणी खोजु बाड़के
1: खोजु नव युवती
0: मानसिंह कहले कली खोज नारद मुनि
1: तरतर हो पलैले आगे
0: नारद तरतर गई पहुंची गले रुक्मिणी हवन
1: अच्छा
0: वो नारद को देखी राणी कले नमस्कार कल्याण करे प्रभु
1: ब्रह्मा कुमार
0: कार्य आसिल
1: हे
0: कार्य आसिल
1: हे विधि सूत।

0: सुमती कहिला हे स्वामी
1: हे स्वामी
0: बाहरे वर्षा न घरे वर्षा
1: अच्छा
0: ओइ खबर बइलिबा चार चार टा पिला मु खाय को पाइले नि मु पिला खाय को पाइले नि सब बेले कृष्ण नाम धरुछ कृष्ण नाम छाडी दियो
1: से कृष्ण नाम रे मिलु छी कोन
0: है पल्ला सुदामा तू सुमती कि मु सुदामा
1: अच्छा अच्छा
0: तू केड़े कथा कहिलु तू कृष्ण नाम छाडदा कथा कहिलु
1: कि रे
0: सुबिलो मो बाल्य।

0: अरे जा जा
1: तोर मोर जोड़ी जाऊरी पत्थर चलो नावरे
0: रक्त नी गज गमने फूल बने जा।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
3: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें खुश है। हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
2: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग अभी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
2: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं, ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
3: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना सीखने के बाद, देखने के बाद मैं वापस आई। और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने अनविज्ञता, कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है,